0: நேயர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு, இன்று இரவு 10 மணிக்கு சுகமான ராகங்கள் நிகழ்ச்சி. இன்றைய சுகமான ராகங்கள் நிகழ்ச்சி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நேயர்களின் விருப்ப பாடலாக வலம் வர உள்ளது. தருமபுரி பண்பலை 102.5, ஏற்காடு பண்பலை 103.7, நேரம் இரவு 8 மணி. நேர்கள் தொடர்ந்து கேட்கலாம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் ஃப்ரம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் கஸ்டமைஸ்ட் நிகழ்ச்சி.
1: We bring you a talk on environmental jurisprudence by Anna Apriya, Associate Legal Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी जूरिस्प्रूडेंस हो, वेदर इन्वायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है, पहले हम ये देखते हैं. एंड देन वी सी, वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. बट एक पिक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल constitution environmentally blind tha in the very beginning when in 1950s it was adopted, because the term environment, environmental protection, ecological conservation, ye sare terms nahi the usme. But other school of thought on the other hand, which I also agree with, says that silence on the word environment does not mean ki koi intent nahi tha constitution ka environment ko protect karne ka. Later on we'll see kaise article 21 jo ki hamesha se constitution ka part raha hai usko hi use karke hamari human rights and right to dignity under article 21 ko use karke environmental rights aage evolve hue hain. और ये मेन प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनवायरनमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन्स की होती है वो 51AG में मेंशनड है. ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन. सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड फ्यू मोर प्रोविजन जो कि यूजअली छूट जाता है लोगों के नोटिस से, क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. बट इफ यू लुक एट द प्रोविजन्स रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शंस में उनके मेंशनड होता है. इफ़ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल गवर्नमेंट जनरली, कि यू हैव टू मेक अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. तो जो डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ हैं उनके रिस्पेक्ट में स्पेसिफिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का मेंशन है. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आए हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज हैड गिवन इंपॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. सो इफ यू कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट आया, 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1981 में एयर कंजर्वेशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एंड फाइनली 1986 में Environmental Protection Act, which is more of an umbrella act, जिसमें सारा environment की सारी चीज़ें cover होती हैं. But that came after the Bhopal gas tragedy specifically. Central Pollution Boards जो होते हैं जो Water और Air Act के under काम करते हैं, and EIA notifications जो कि Environmental Protection Act के under से ही emanate करता है. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. Toh also we know, toh after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. When we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right-based manner ki kitne tarike ke rights hain. Environment law kahan kahan se aa sakta hai. So ye constitutional rights aur fundamental rights, kyunki like I mentioned in the very beginning, usme mentioned nahi tha constitution mein shuruaat mein, to wo dheere dheere develop hua through amendments, but usme supreme court ka particularly kafi important role raha hai. So starting with one of the cases, so it is something which people say in environmental law circles ki if we talk about the journey of environment law, wo kisi रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्तीचंद का केस, जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश.

0: वहाँ पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था विच इज़ नाउ बीएनएसएस, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज़ का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया सो इट इज देयर चॉइस नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है, बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी। कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुंचने लग गई। थर्ड वाज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ एनजीटी आल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज़ नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स, जिसमें ए वर्सेस बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेज। अदर देन दिस मॉनिटरी कंपेंसेशन इक्विटेबल रेमेडीज भी कोर्ट देने लग गई एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इशूज। अब जो दो मेन आर्टिकल की बात होती है राइट्स चैप्टर में, वन इज आर्टिकल 19 एंड वन इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 बहुत मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि इट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट उसमें कोर्ट ने रीड किया हुआ है राइट टू नो। तो इसमें राइट टू नो कोर्ट ने कैसे इंप्लीमेंट किया कि उसमें कोर्ट ने अथॉरिटीज़ को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजन्स हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स। तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इम्प्लीमेंट किया। एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ। आर्टिकल 21 में देर वेर फ्यू केसेज, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देर इज अ राइट टू लिव इन एन हेल्दी इन्वायरमेंट, वो दून वैली का केस था स्पेसिफिकली स्पीकिंग, रूरल इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मैंशन नहीं किया। बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट होलसम इन्वायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32। तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। And you must have heard the name of M.C. Mehta. He was a big-time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं। जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इनका नाम सुनते हैं, जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स। तो वंस यू गेट अ राइट, वॉट एम सी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले। क्योंकि जब एक वेयर देर इज अ राइट